0: प्रेसको साथ अब नेपालभरि 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरूमा फ्री इन्टरनेटको मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज अन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: द वीकली काउंटडाउन शो ऑफ टॉप 10 इंग्लिश नंबर्स with exclusive segments, classic choice, info house, fresh hits, and many more. Do tune in to Weekly 10. Weekly 10.
3: Time, Sunday 7 p.m., Monday 9 a.m., and Thursday 2 p.m.
2: on KIPS 98.3

जीवनयाता शीतलता की मा जीवनयाता जीवित यही मा अलेना पाँच छेगु जीवनया पला पला नहीं पुकी मा किप्स एफएम छेगु जीवनया सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवनयाता शीतलता बीमा जीवनयाता जीवित यईमा अलेना पो छेगु जीवनया पला पला न्हिपकीमा किप्स एफएम छेगु जीवनया सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम।

0: सात अब नेपाल भरि 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेटको मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज ऑन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: Stay connected with your favorite station. Keeps FM 98.3 megahertz.
3: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
2: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
4: Keeps 98.3 FM ma gazal sansa.

0: Life Changing Quotes。जो व्यक्ति कहिल्यै हार मान्दैन उसलाई कसैले पनि हराउन सक्दैन।
1: Best romantic Hindi songs.
2: तुझमे रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझमे रब दिखता है यारा मैं क्या करूं
1: Every Sunday 9 p.m. and Tuesday 6 p.m.

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12.

0: radio station. Keeps FM 98.3 megahertz.
1: Wake me up when September ends.
2: Sunao lo yaad, sunao lo geet. Bollywood Golden Hits. Keeps FM 98.3 megahertz ma. आइतबार र मंगलबार दिवसो 4 बजे, सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे. पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईं की रेडियो कीप्स एफएम मा.
3: Gives 98.3 FM.

0: Waves FM 98.3 MHz.
1: सौंदर्य, स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल किप्स एफएम 98.3 MHz में शनिबार बेलुकी 7 बजे, मंगलबार बिहान 7 बजे र बुधबार दिउँसो 3 बजे.
2: Just move your feet. Just move your feet. Enjoy the dance beat. Enjoy the dance beat. Dance beat. Friday 8 a.m. and Saturday 6 p.m.
3: Keeps FM 98.3 megahertz. RJ wanted.
4: Do you have the voice, energy, and passion to entertain people every day?
3: We're hiring radio jockeys to host shows, connect with listeners, and bring music to life.
4: Clear voice, confidence, and creativity required. For the voice test, apply now at rj.keepsfm@gmail.com. Phone number 01-5673-114. 01-5673-114.
3: Be the next big voice on Keeps FM 98.3 megahertz.
5: What's the secret to success?
6: Simple. Say yes to radio advertising.
5: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
6: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
5: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
7: इन्जिनियर साहब, घर बनाउन खोज्दैछु, कुन इटा राम्रो होला?
8: अरु होइन, ए एसी लाइट ब्रिक नै रोज्नुस्।
7: किन ए एसी लाइट ब्रिक नै?
8: यो हल्का मजबुत र ठूलो आकारको हुन्छ जसले खर्च घटाउँछ, निर्माण छिटो र भूकम्प जोखिम कम गर्छ। त्यति मात्र होइन, यसले घर गर्मीमा चिसो जाडोमा न्यानो राख्छ।
7: वाह, मैले खोजेको जस्तै रहेछ।
8: स्ट्रङ, लाइट एन्ड स्मार्ट। ए एसी लाइट ब्रिक फ्याक्ट्री मलिक धादिङ। फोन 01-591-3596, 98-012-3544.

0: Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 MHz मा
1: सुनौलो याद सुनौलो गीत बॉलीवुड गोल्डन हिट्स FM 98.3 MHz मा आइतबार र मंगलबार दिउँसो 4 बजे सोमबार र शुक्रबार बेलुकी 10 बजे पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईं की रेडियो कीप्स FM मा
2: This is Kips 98.3 FM, your companion.
3: Are you ready for the big O?
4: This is In Box.

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: हरेक शनिबार बेलुकी 10 बजे
1: Keeps FM 98.3 megahertz RJ wanted.
2: Do you have the voice, energy and passion to entertain people every day?
1: We're hiring radio jockeys to host shows, connect with listeners and bring music to life.
2: Clear voice, confidence and creativity required. For the voice test, apply now at rj.keepsfm@gmail.com. Phone number 01-5673-114. 01-5673-114.
1: Be the next big voice on Keeps FM 98.3 megahertz.
3: Hazur. न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल स्कुटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाडी बस ट्रक एक्सकाभेटर ट्र्याक्टर जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी
4: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स
5: What's the secret to success?
6: Simple. Say yes to radio advertising.
5: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
6: Radio advertising, affordable, effective and culturally close.
5: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
7: अब इन्टरनेट ढिलो होइन छिटो स्मार्ट र सुरक्षित
8: इन्ट्रोड्युसिङ वाइफाई 6 विथ सुबिसु सुरक्षा
9: वाइफाई 6 सँग पाउनुहोस् हाई स्पिड र स्टेबल इन्टरनेट
8: साथै सुबिसु सुरक्षाले तपाईँलाई राख्छ अनलाइन ब्राउजिङमा सुरक्षित
9: हानिकारक साइट असुरक्षित कन्टेन्ट अब सबै इन्स्टेन्ट ब्लक हुन्छ
7: सुबिसु छिटो पनि सुरक्षित पनि थप जानकारी तथा बुकिङका लागि
10: 01-42-35-888 98-12-35-888
11: You can dance.
12: You can sing. All you gotta do is
13: just tune in.
14: Keeps FM 98.3 megahertz, your companion.
15: The radio of new generation.
16: Stay connected with your favorite station, Keeps FM 98.3 megahertz.
6: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
16: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
17: Raja Motiwa Motinaewa Ni Pushi Changutu Kele
18: नेपाल भाषाया न्याय पुसिचौ मेत
19: सुथेया 6:30 नि से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज

0: Kit 98.3 FM, your companion.
1: Sunao lo yaad, sunao lo geet, Bollywood golden hits. Keeps FM 98.3 MHz ma.
2: Dil deewana, din sajna ke.
1: Aitabar ra mangalbar diusu 4 baje. सोमवार और शुक्रवार बेलू की 10 बजे पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईं की रेडियो किप्स एफएम मा
3: नेपाली सांगीतिक क्षेत्र का गीत संगीत को साथ मा रमाइला सेगमेंट्स हरू कार्यक्रम
4: म्यूजिक मज़ा म्यूजिक
3: प्रत्येक मंगलवार बेलुकी 8 बजे देखि 9 बजे सम्म र प्रत्येक बिहीबार बिहान 7 बजे देखि 8 बजे सम्म मात्र किप्स 98.3 एफएम मा
5: किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज आरजे वांटेड.
6: Do you have the voice, energy and passion to entertain people every day?
5: We're hiring radio jockeys to host shows, connect with listeners, and bring music to life.
6: Clear voice, confidence, and creativity required. For the voice test, apply now at rj.keepsfm@gmail.com. Phone number 01-5673-114. 01-5673-114.
5: Be the next big voice on Keeps FM 98.3 megahertz.
7: What's the secret to success?
8: Simple. Say yes to radio advertising.
7: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
8: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
7: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
9: तेरी झ्याप झ्याप बत्ती गएर हैरानै भयो.
10: अब धन्ना नमान्नुस्. Non-stop power पाउन अब एकदमै कम खर्चिलो र भरपर्दो इन्भर्टर ब्याट्री ब्याकअप सिस्टमको लागि ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा सम्पर्क गर्नुहोला. सुरुवाती मूल्य मात्र 16,999 रुपियाँदेखि.
11: सम्पर्क ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ. फोन नम्बर 5302678 5302678. लोकेसनको लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स.
12: You can dance.
13: You can sing. All you gotta do is
14: just tune in.
15: Kips FM 98.3 MHz, your companion.
16: The radio of new generation.
17: Amilai Sunhos, www.kipsfm.com marfat. Just tune in, radio, naya generation ko.

मई काले भएर हो के भोरा, ओहो मई काले भएर हो के भोरा, दिल वाले छु हो दिल वाले छु ओहो।

0: एक्सप्रेस को साथ अब नेपाल भरी 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज ऑन जहाँ पनि खुरुखुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: Just move your feet. Just move your feet. Enjoy the dance beat. Enjoy the dance beat. Dance beat. Friday, 8 a.m. and Saturday, 6 p.m.

0: Peeps FM 98.3 MHz. Your companion.
1: सौंदर्य, स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ज मा शनिबार बेलुकी 7 बजे मंगलबार बिहान 7 बजे र बुधबार दिउँसो 3 बजे
2: किप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार
3: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में
2: गजल संसार
3: गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी
4: हर एक शनिवार दिल की 10 बजे
5: What's the secret to success?
6: Simple. Say yes to radio advertising.
5: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
6: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
5: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.

0: Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 MHz मा
1: एक फूल झरेर के भो एक फूल झरेर के भो
2: नेपाली सुपर हिट्स

0: Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 MHz मा
1: कौन मेरा मेरा क्या तू लागे
2: Best romantic Hindi song
3: तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं
2: Every Sunday 9 p.m. and Tuesday 6 p.m.

0: Kips FM 98.3 presents Pop Hour.
1: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार.
0: Every Friday 12 p.m.

0: Keeps FM, 98.3 megahertz. RJ Wanted.
1: Do you have the voice, energy, and passion to entertain people every day?
0: We're hiring radio jockeys to host shows, connect with listeners, and bring music to life.
1: Clear voice, confidence, and creativity required. For the voice test, apply now at rj.keepsfm@gmail.com. Phone number 01-5673-114. 01-5673-114.
0: Be the next big voice on Keeps FM 98.3 megahertz.
2: Teri chap chap batti gaera hairani bhayo.
3: अब धन ना नमान्नुस् नन स्टप पावर पाउन अब एकदमै कम खर्चिलो र भरपर्दो इन्भर्टर ब्याट्री ब्याकअप सिस्टमको लागि ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा सम्पर्क गर्नुहोला। सुरुवाती मूल्य मात्र 16,999 रुपियाँदेखि।
4: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्। ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।

0: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग.
1: तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं.
0: एवरी संडे 9 PM एंड ट्यूजडे 6 PM.

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12.

0: Every Tuesday and Friday, 1 p.m. Wednesday, 10 p.m.
1: Timile bhane ka sara dev chhoera ma
2: Nepali super hits
0: only on Kips FM 98.3
2: Kips FM 98.3 megahertz RJ wanted.
3: Do you have the voice, energy, and passion to entertain people every day?
2: We're hiring radio jockeys to host shows, connect with listeners, and bring music to life.
3: Clear voice, confidence, and creativity required. For the voice test, apply now at rj.keepsfm@gmail.com. Phone number 01-5673-114. 01-5673-114.
2: Be the next big voice on Keeps FM 98.3 megahertz.
4: You can dance.
5: You can sing. All you gotta do is
6: just tune in.
5: Kips FM 98.3 MHz, your companion. The radio of new generation.
7: Amilai Sunhos, www.kipsfm.com Marfot. Just tune in, radio Naya Generation Ko.
8: हजुर न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल स्कूटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाडी बस ट्रक एक्सकाभेटर ट्र्याक्टर जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी
9: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स
10: आर यू रेडी टु टर्न अप द वोल्युम एन्ड रॉक आउट लाइक नेभर बिफोर
11: फ्रॉम लेड जेपेलिन टु अ सी टी सी फ्रॉम क्वीन टु द रोलिंग स्टोन्स एन्ड फ्रॉम गन्स एन्ड रोजेस टु निर्वाना वी've got the ultimate playlist of rock greatness.
10: Join us as we journey through the decades of rock and roll, featuring the timeless classics that still get your heart pounding and your fists pumping.
11: Don't miss a beat. Mark your calendars and set your alarms because it's time to rock out with the best.
10: Rock Fever. Every Friday 9 a.m. and every Thursday 7 p.m.
11: Radio station. Keeps FM 98.3 megahertz.
12: Wake me up when September ends.
13: सत्तरीको दशकदेखि आजसम्मका हिट गीतहरू हरेक धुनसँग जोडिएको समयको कथा कार्यक्रम सङ्ग्स टाइमलाइन जहाँ हरेक गीतले सुनाउँछ आफ्नो इतिहास
14: Sunday, 7 a.m. Monday, 8 p.m. And Tuesday, 3 p.m.
2: Station Keeps FM 98.3 megahertz.

0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
1: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए।
0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स FM 98.3।